0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दो दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय

0: இரவு 7:30 நடைபெற உள்ள மற்றொரு போட்டியில் ஒடிசா அணி பஞ்சாப் அணியை எதிர்கொள்கிறது. மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள். இந்தியாவில் எளிதாக வணிகம் செய்யவும் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதிலும் மத்திய அரசு தொடர்ந்து உறுதியுடன் இருப்பதாக பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார். 2047 போதைப்பொருள் இல்லாத இந்தியா என்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா கூறியுள்ளார். ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பெட்ரோல் மீது லிட்டருக்கு 3 ரூபாய் சிறப்பு கூடுதல் கலால் வரியை மத்திய அரசு விதித்துள்ளது. பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் திரு விஜய் வலியுறுத்தியுள்ளார். IPL கிரிக்கெட் போட்டியில் லக்னோ அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சென்னை அணியை வென்றது. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां संपूर्य यूरोप देशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक संबंधान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैंड देशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेंडसन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबीनगरे UAE देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिकरूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमंत्री मोदी डच देशस्य प्रधानमंत्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखांच मिलिष्यति। प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री मोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानाम् उपरि कथमपि अधिभारं आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते 3 रूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणां अपेक्षया 16 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किमराज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यत्वदिवससमारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओमप्रकाशमाथुरः, सिक्किमराज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रेङ सिंह तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तरक्षेत्रविकासमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीयमाध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीयचरणे छात्राः विसङ्गतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उत वा अङ्कनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानाम् उत्तराणां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृतवार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य 2-3 दिनाङ्कयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं 7 स्तोभैः

0: नमस्कार, सुप्रभात, अभिनंदन। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे, जहां दिन की शुरुआत होती है थोड़ी सी मिठास और ढेर सारी एनर्जी के साथ। तो दोस्तों, आज की सुबह एक नया पन्ना है, कल क्या हुआ उसे भूल जाइए और आज क्या करना है उस पर मुस्कुराइए। कहते हैं ना कि अगर दिन की पहली चाय कड़क और मुस्कुराहट सच्ची हो तो दिन अपने आप बेहतरीन हो जाता है। तो चलिए, इसी के साथ एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं नए दिन का। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
1: हेलो जया, एंड नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल, वेलकम टू आवर प्रोग्राम आज सवेरे। मी एंड जया, वी आर ऑल स्माइल्स एंड वेरी थ्रिल टू स्टार्ट आवर प्रोग्राम एज जया सेड। एंड वेल यस, वी आर बिगिनिंग विद द नेशनल इंटरनेशनल न्यूज। वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन द फर्स्ट सेगमेंट ओनली, यू लाइक दम, वी आर 100% श्योर ऑफ दैट लिसनर्स। वी ऑल्सो हैव मेट्रो सिटी अपडेट्स, वील फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द मेट्रो सिटीज एज वेल। एंड देन टुडे इट्स 16th of May 2026, we'll also find out and explore the history which is related to today. First, let us begin with the headlines.
0: तो संयुक्त अरब अमीरात और यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए हैं।
1: कंटिन्यूइंग विद दैट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन द नेदरलैंड्स लेट लास्ट नाइट ऑन द सेकंड लेग ऑफ हिज फाइव नेशन टूर aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Thum Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent covering the Prime Minister's Netherlands visit has filed this report.
2: During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their majesties the King and the Queen. This visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. On Saturday, Prime Minister Modi will address the Indian communities and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the field of semiconductor chips and AI, where Netherlands stands as a global leader. From the trade perspective, Netherlands is India's key economic partner, one of the largest export destination as well as investor in India. Both the countries have robust partnership and cooperations in the fields of water management, renewable energy, green hydrogen economy, agriculture technologies and health. This is Shushru Sharma for Akashvani from The Hague, Netherlands.
1: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Gothenburg in Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with the president of the European Commission, Ursula von der Leyen. On the fourth leg of his visit, Prime Minister Modi will reach Norway on Monday for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. He will call on King Harald V and Queen Sonia

0: and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. On Tuesday, Mr. Modi will take part in the third Indian-Nordic summit. On Tuesday, Mr. Modi will be joined by the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, Prime Minister of Finland, Petteri Orpo, Prime Minister of Iceland, Kristrún Frodastóttir, and Prime Minister of Sweden, Ulf Kristersson, for the summit. In the final leg of his visit, the Prime Minister will reach Italy on Tuesday. During the visit, Mr. Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, and hold talks with Prime Minister Giorgia Meloni.
1: सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है. पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है. डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है. एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है. संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी. घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. और इसके साथ ही शगुन नीट UG की परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है.
0: Right.
1: 21 जून को नीट UG की परीक्षा होगी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं. उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी. पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी. CBI इस मामले की जांच कर रही है.
0: वेल, इन जम्मू एंड कश्मीर द 3-डे हिस्टोरिकल एनुअल मुंगरी मेला विच इज ऑल्सो नोन एज शिव पार्वती मेला इट कमेंस्ड यस्टरडे एट सरदाबर एरिया ऑफ ब्लॉक मुंगरी in Udhampur district. So the pilgrims and natives visited the Shiv Parvati cave shrine to seek blessings of Lord Shiva and Ma Parvati. So it is pertinent to mention that people from Bhumag, Panchari, Udhampur, Chennani and Ramnagar areas of the Udhampur district as well as from Riyasi, Ramban and Jammu districts converge Sardabar every year to celebrate this Mela and pay obeisance to Bhagwan Shiv in the naturally formed Shiv Parvati cave shrine, a wonderful sight. So there, local artists, including students from different educational institutions, presenting scintillating cultural performances. They presented scintillating cultural performances on the first day. I was telling you about Shiv Parvati Mela.
1: और इसी तरह की कुछ अच्छी खबर भी है मेरे पास मध्य प्रदेश से, जहां श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कल 2 और मादा चीतों को जंगल में छोड़ा गया है. और इसके साथ ही कूनो में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले चीतों की कुल संख्या 16 हो गई है. और ये दोनों मादा चीते फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में शामिल हैं. इन्हें सफलतापूर्वक क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया है. इससे पहले 13 मई को भी एक मादा चीते को जंगल में छोड़ा गया था. प्रोजेक्ट टाइगर के फील्ड निदेशक ने बताया है कि सभी चीते स्वस्थ हैं और जंगल के वातावरण में अच्छी तरह से ढल रहे हैं. उनकी निगरानी के लिए उन्नत रेडियो टेलीमेट्री प्रणाली और विशेष क्षेत्र दल तैनात किए गए हैं. और पता है शगुन, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में अपने जन्मदिन पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया था.
0: यस, एग्जैक्टली. सो यू वर टेलिंग अबाउट बोथ द फीमेल चीतर्स, दे आर अमंग द 9 ब्रॉट फ्रॉम बोत्सवाना in February 2026. So they have been gradually released after successfully completing their quarantine period. So earlier one female cheetah was also released on May 13th. And you were telling about Project Cheetah launched by Prime Minister Narendra Modi in 2022. Now let's stretch our boundaries a little. Israel and Lebanon have agreed to a 45-day extension of their ceasefire after another round of talks in Washington. U.S. State Department spokesperson Tommy Pigott said the April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress after America hosted 2 days of highly productive talks between Israel and Lebanon, which concluded yesterday. So in a social media post, Mr. Pigott said that the U.S. State Department will reconvene the political track of negotiations on 2nd and 3rd of June. Now in sports. Over to sports now. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shufflers Noorizuddin and Gosey Fay in semi-finals of Thailand Open in Bangkok today. Earlier, the Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami 21-12, 21-13 in the

0: quarter-final clash yesterday. Meanwhile, other ace Indian shuttlers, including PV Sindhu and Lakshya Sen, bowed out of the tournament. Sindhu lost 21-19, 18-21, 15-21 to world number 3 Akane Yamaguchi of Japan in the women's singles quarter-final.
1: अर्शकुन, ये जो प्रमुख खबरों की का सेक्शन खत्म करने से पहले हम बता दें कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरा करने जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के एक हिस्से के रूप में आकाशवाणी अगरतला केंद्र द्वारा कल शाम सुकांता अकादमी सभागार में एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रव्यापी समारोह के समन्वय में आयोजित इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन पश्चिम त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर विशाल कुमार ने CGST अगरतला कार्यालय के अतिरिक्त आयुक्त और श्री सैमुअल एस वाईफाई की उपस्थिति में किया गया। और जो संगीत संध्या में ना पंकज कुमार दास ने जो गिटार पर मनमोहक प्रस्तुति दी और जिनका तबला पर जो देवज्योति दास गुप्ता ने भी बहुत अच्छा संगम दिया है जो सुनने में बेहद रोमांचक था।
0: वेल यस, सो गाइडेड बाय द मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट आकाशवाणीज एस्टैब्लिशमेंट ऑन June 8, 1936 This celebration highlighted Akashvani's enduring legacy as the nation's most credible broadcaster.
1: और अब रुक करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं कि वहां का क्या हाल है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली के समाचारों का।
0: श्योरली,
1: तो सबसे पहले बताएं कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि DMRC ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत को कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की है। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने DMRC को 2 अत्याधुनिक हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें उपलब्ध कराई हैं जिसमें बैठने की क्षमता 35 यात्रियों की होगी। इसमें बहुत सारे GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम है, CCTV कैमरे हैं और इस बस का जो किराया है ना शगुन, ये महज 10 से 15 रुपए के बीच में रखा गया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड UPI और नकद भुगतान के विकल्पों के साथ इसमें यात्री टिकट खरीद सकते हैं और यह शटल बस सेवा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके अलावा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक भी बस सेवा संचालित की जाएगी। और इस बीच ये भी बताएं कि दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR का जो अभियान है वो 30 जून से शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता को सूची में शामिल किया जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में न रह जाए।
0: नाउ वी विल हेड टू चेन्नई। Tamil Nadu government issued a gazette notification declaring Trichy's constituency as vacant in the wake of Chief Minister Joseph Vijay resigning the seat he contested in 2 seats and retained the Perambur seat. According to the gazette notification issued by Appavu, the earlier speaker, on May 10, he accepted Vijay's resignation as per Article 193B of the Indian Constitution and then declared the seat vacant from the date of resignation. The notification would be sent to the ECI and elections will be held for Trichy East within 6 months. Another update from Chennai. So at least 17 foreign nationals were detained at Chennai and Madurai airports for allegedly casting their votes in the recently held assembly elections in Tamil Nadu. So immigration officials detained them after noticing the indelible ink marks on their fingers during passport checks. While 15 of them were apprehended at Chennai airport over the past few days when they were about to return to their respective countries. 2 were detained at Madurai airport. The passengers were natives of Tamil Nadu and Puducherry.
1: और अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। तो महाराष्ट्र में आज से जनगणना 2027 के अंतर्गत घर सूचीकरण और आवास जनगणना अभियान शुरू होगा। राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित 33 प्रश्नों को पुनः अधिसूचित किया है जिन पर 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सर्वेक्षण किया जाएगा। जनगणना कर्मी प्रत्येक घर जाकर अपने आधिकारिक मोबाइल उपकरणों में स्थापित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवास की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और संपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। जिन नागरिकों ने अपने घरों के लिए स्वगणना पूरी कर ली है उनसे अनुरोध किया गया है कि सत्यापन और प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए वे जनगणना कर्मियों के साथ अपना स्वगणना पहचान यानी कि ID नंबर साझा करेंगे। राज्य सरकार ने नागरिकों को यह भी आश्वासन दिया है कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत और घरेलू जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। एक और अपडेट है मुंबई से,

0: जो कि अच्छी भी है और बुरी भी है शगुन, क्योंकि दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने यह जानकारी दी है कि वर्ष 2025 में देश भर में लगभग 22,500 करोड़ रुपए के साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में धोखाधड़ी होना ये खराब चीज है, और हाँ इतने मामले सामने आए, उनको पकड़े गए हैं कुछ चीजें, तो ये बात अच्छी है। तो कल मुंबई में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी DOT में, के मुंबई LSA के अतिरिक्त महानिदेशक आशीष पाठक ने बताया है उसमें कि इनमें महाराष्ट्र से दर्ज 1100 करोड़ रुपए के मामले भी शामिल हैं, और 17 मई को मनाए जाने वाले विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर श्री पाठक ने यह भी कहा है कि पिछले वर्ष 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन पर 30 लाख शिकायतें दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि जो DOT ने 34 लाख संदिग्ध मोबाइल नंबरों को डिस्कनेक्ट कर दिया है, 22 लाख फर्जी हैंडसेट को ब्लॉक किए हैं, और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 1697 लाख से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट को निष्क्रिय किए गए हैं। इसके अलावा 59 लाख से अधिक संदिग्ध बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है, जिससे 1200 से अधिक संगठनों जिनमें बैंक और कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी शामिल हैं उसको जोड़कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान को रोका गया है। ये अच्छी चीज हुई है इसमें। True. और इसके साथ ही नागरिकों से ये आग्रह भी किया गया है कि वे सतर्क रहें, संदिग्ध संदेशों, कॉल्स या फिर इसी तरह के संचार पर आंख बंद करके भरोसा ना करें।
1: यस एंड Well, we'll head now to Bengaluru, where the idea of an annual Bengaluru Drone Festival is gaining traction. So, Karnataka Minister for Electronics, IT and Biotechnology, Priyank Khadge, has expressed a strong commitment to encourage drone economy. The state, he informed, will adopt necessary infrastructure, policy and real-world adoption mechanisms to contribute significantly to India's drone economy. And this, actually, the Bengaluru Drone Festival, he says, can have drone racing, hackathons, exhibitions and display shows. He was actually speaking after a high-level meeting with the drone industry in Bengaluru yesterday. The minister also spoke about creating shared testing facilities, simplifying regulatory pathways and enabling a strong ecosystem for startups and industry to innovate and scale up their operations. The Karnataka Medical Education Additional Chief Secretary Mohammed Mohsin has announced that guidelines for a better and effective use of artificial intelligence will be released within his department.
0: और अब चलते हैं कोलकाता, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता के SSKM अस्पताल में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया। और इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के चिकित्सा अधीक्षकों और प्राचार्यों ने भी भाग लिया। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन और प्रगति पर भी चर्चा की गई।
1: हैदराबाद नाउ, वेल द सिटी विटनेस्ड रोड शो इन हैदराबाद टू प्रमोट द फार्मा मैकटेक एंड लैब नेक्स्ट Expo 2026, the Engineering Export Promotion Council of India held a roadshow. Actually, the expo will be held in September this year in New Delhi. It will showcase pharmaceutical machinery and laboratory equipment from across India. So the preparations, they were also held there. And the event will bring together manufacturers, exporters and global buyers. And well, India exports pharmaceutical machinery but imports more than it sells. The roadshow discusses new technologies like smart manufacturing and automation. So this was all about the metro cities.
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी FM गोल्ड पर जया और शगुन के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। राजधानी में आज मौसम हालांकि साफ रहेगा, लेकिन गर्मी का जो कहर है ना शगुन, वो जारी रहेगा। जो अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता
1: है। फ्रॉम हीट
0: और इसी तरह से मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाया रह सकता है, गरज के साथ चमक की भी संभावना है और बहुत ज्यादा तापमान नहीं है, हालांकि गर्मी वहां भी है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल।
1: Well, beginning with Chennai, it is expected to have partly cloudy sky and there is possibility of moderate rain or thunderstorm. Minimum temperature

0: and it's quite hot. The maximum temperature will be around 41 degrees Celsius in Hyderabad. Jaya.
1: और अब श्रोताओं, वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज ही के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की है। आज 16 मई 2026 है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। विज्ञान, संस्कृति और कला में प्रकाश की जो भूमिका है ना, उसकी महत्ता को जानने के लिए हर साल 16 मई को यूनेस्को द्वारा यह दिवस मनाया जाता है।
0: Well, yes, hundreds of light, science, technology, educational and the other educational events, they take place across more than 40 countries. Well, yes, this is all about exploring global initiatives and access educational resources directly through the UNESCO International Day of Light portal as well. This date marks the anniversary of the first successful operation of the laser by physicist and engineer Theodore Maiman in the year 1960.
1: Yeah, और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है ना, वो 2018 को मनाया गया था।
0: So let's tell our listeners about the theme as well. The focus will be on light for a sustainable future.
1: बिल्कुल।
0: Now let's start with the years. In the year 1929, the first ever Academy Awards were handed out in Hollywood, California, with about 270 people in attendance. In 1966, the political and social campaign known as the Cultural Revolution officially began in China with the publication of the May 16 notification issued by Mao Zedong.
1: और इसके कुछ दिन बाद आज ही के दिन 1975 में सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बनाया गया था और राजशाही इस दिन समाप्त हुई थी और ये 22वें राज्य के रूप में
0: Yes, 22nd state. In the same year, Jaya, Japanese mountaineer Junko Tabai made history as the first woman to reach the summit of Mount Everest. And this milestone stands as one of the most famous and inspiring events on this day.
1: और आज ही के दिन 1996 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो पता नहीं कितने लोगों के प्रेरणा रहे हैं,
0: जी,
1: उन्होंने पहली बार देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
0: In 1991, Queen Elizabeth II of the United Kingdom addressed a joint session of the United States Congress, becoming the first British monarch to do so.
1: और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं।
0: We are beginning with, well, first event, let me start with that, the birth centenary celebrations and a one-day national seminar on contributions of Acharya Sri Dinesh Chandra Joshi in the field of Sanskrit and Indian culture in New Delhi yesterday. The Ministry of Culture actually organized the birth centenary celebrations. The ministry said that several commemorative programs, academic seminars, cultural events, exhibitions and spiritual gatherings across the country have been held since the 11th of this month and it will last till 11th of April next year in honor of eminent Sanskrit scholar. It stated that despite the severe hardships of a remote mountainous region and limited resources, Acharya Joshi emerged as a radiant torchbearer of Indian culture through his scholarship, spiritual discipline and unwavering determination.
1: तो इसके साथ हम अब याद करते हैं कि आज किन की जयंती है, पुण्यतिथि है या जन्मदिन है। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं असम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता और आदिवासी नेता भीमबर देवरी को। आज उनकी जयंती है और जिन्हें मुख्य रूप से असम को पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन गया है, उसमें विलय होने से बचाया था उन्होंने और वहां के स्वदेशी जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। इसके साथ ही हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के शुरुआती सुनहरे दौर के एक अत्यंत सम्मानित और दिग्गज फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता रहे फणी मजुमदार को।
0: जी,
1: आज उनकी पुण्यतिथि है और उन्होंने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली, मैथिली, अंग्रेजी और चीनी, यानी कि सिंगापुर की जो बहुत सारी विभिन्न भाषाएं हैं, उनमें भी फिल्मों का निर्माण किया है और वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई। फणी मजुमदार को समाज का एक यथार्थ और संगीतमय ड्रामा को पर्दे पर बहुत खूबसूरती से उतारने के लिए याद किया जाता है। 1938 में न्यू थिएटर्स के बैनर तले बनी फिल्म स्ट्रीट सिंगर उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। महान गायक अभिनेता केएल सहगल और खानन देवी अभिनीत इस फिल्म का गाना बाबुल मोरा नहर छूटो ही जाए आज भी अमर है।

तो जो फणी मजुमदार है ना, उनके फिल्मी केवल कहानियों के लिए नहीं बल्कि सदाबहार और सुरीली गीतों के लिए भी जाने जाते हैं। और आरती फिल्म का ये गीत भी बहुत ही आनंदमय है।

0: और आज जयंती है भारत की एक बेहद सम्मानित वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, फिल्म इतिहासकार, शिक्षाविद और शोधकर्ता विजया मुले की। फिल्म जगत में उन्हें प्यार से अक्का यानी कि बड़ी बहन कहा जाता है और दूरदर्शन पर जो बचपन बिताने वाली पीढ़ी है ना, उन्हें हमेशा एक चिड़िया अनेक चिड़िया जैसे कालजयी और शिक्षाप्रद एनिमेटेड गीत की रचना के लिए याद रखती है।
1: दीदी दीदी वो देखो अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ।

0: एक अनेक और एकता विजय मुले द्वारा निर्देशित इस लिखित बेहद ही जो प्रसिद्ध शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म है और भारत सरकार ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए इसे तैयार करवाया था और इस फिल्म का ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है जो बच्चों को एकता विविधता में एकता की सीख देता है।
1: Rightly said. Well, she's Vijay Mule, recognized as one of the pioneers of the film society movement in India, remembered for her documentaries and educational communication as well.
0: और आज जयंती है पद्मश्री माणिक वर्मा की, वो भारत की एक अत्यंत प्रतिष्ठित और दिग्गज शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका थी।

0: So listeners, today it's also Vicky Kaushal's birthday, the actor. Well, he has worked across a range of genres.
1: क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं?
2: Yes sir.
1: क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है?
2: Yes sir.
1: Commandos, who are we?
2: Indian Army sir.
1: How is the Josh?
2: Hi sir.
1: How is the Josh?
2: Hi sir.
1: I said how is the Josh?
2: Hi sir.
3: श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और शगुन को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का।

0: कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
3: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का

0: कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR

0: दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाव

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: तेरे गाने तिल तोड़ने दे।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: அரங்கிசையில் தீபிகா வரதராஜன் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். பி ஞானதேவ் அவர்கள் வயலின், மன்னார்குடி என் சுப்பிரமணியன் அவர்கள் மிருதங்கம். அடுத்த அறிவிப்பு தொடர்கிறது.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की

0: साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। एक रिपोर्ट।
1: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। और खेलों में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर रिजुद्दीन और गो शी फेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour, aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Prime Minister Narendra Modi has reiterated government's commitment to improving ease

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में कल यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया।
1: इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग का समझौता किया है। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया है। इस समझौते से भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की आशा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात में रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी की साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री टॉम बेंडरसन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा महाराज और रानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
3: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टरसन के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा और अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। टेलीविजन चैनल से साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वो सही काम

0: करने जा रहे हैं। उन्होंने अमरीका के साथ बातचीत में ईरान के रवैये की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान समझौतों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान जब भी कोई समझौता करता है तो बाद में ऐसा व्यवहार करता है जैसे बातचीत कभी हुई ही ना हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन यात्रा के दौरान अमरीका और चीन ने कई महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते किए हैं। चीन से लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में श्री ट्रंप ने कहा कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमत हो गया है।
1: And that's General Electric also, the engines, approximately 400-450 engines. We had an amazing time. It was a very historic.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यापार करने में आसानी और देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट झूठी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज बैंकॉक में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गोह से फेई से होगा। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमी नोमुरा और युची शिमोगामा को 21-12, 21-13 से हराया। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की विश्व नंबर 3 अकाने यामागुची से हार गई। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के कुनलावत विदितसन से हार गए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे गुजरात टाइटन्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में $5 अरब के निवेश का वादा किया। दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडारण सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वीसी प्रमोद विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. UAE pledges investments worth $5 billion in India. Both countries signed several agreements including strategic petroleum and gas reserves. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with his Dutch counterpart in Hague. Several pacts expected to be signed in key areas including semiconductors and AI. Israel and Lebanon extend ceasefire for 45 days. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satwik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty to take on Malaysian duo in semi-finals of Thailand Open.

0: ஒலித்த அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள்.
1: இன்னைக்கு செம்ம வேலை, ஷோல்டர் நெக்கு கையின்னு பாட்டு பாட்டா வலிக்குது. இவ்வளவு வொர்க் பண்ணி 2020 பிரேக் எடுத்தியா? அது என்ன 2020 பிரேக்? 20 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை 20 செகண்ட் வந்து நம்ம பிரேக் எடுக்கணும். அந்த டைம்ல எழுந்திரிச்சு நிக்கிறது இல்ல லைட்டா கழுத்து கைய அசைக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. இதுதான் எல்லா டாக்டர்ஸும் அட்வைஸ் பண்றாங்க. சோ எவ்வளவு நேரம் வேணும்னாலும் ஒர்க் பண்ணுங்க, ஆனா 2020 பிரேக் எடுத்துட்டு ஒர்க் பண்ணுங்க. நம்ம ஆரோக்கியம் நம்ம கையில.
0: தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லீன் நிகம். भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबूधाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। लोकसभा

0: अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. दग्गुबाती पुरेंद्रेश्वरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैनल में लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। निचले सदन के सदस्यों में हेमा मालिनी, हरसिमरत कौर बादल और इकरा चौधरी शामिल हैं। राज्यसभा से समिति में सुधा मूर्ति, पीटी उषा और स्वाति मालीवाल सहित अन्य महिलाएं शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां स्थापना राज्य मना रहा है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इज़ुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होना है। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडर मौसम द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के तहत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi reached the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen upon his arrival at the Amsterdam airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Prime Minister Modi has reiterated government's commitment to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a media report on imposing cess, tax or surcharge on foreign travel. He said the report is completely false and there is not an iota of truth in it. The Prime Minister said there is no question of imposing any such restrictions.

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: திரைகானத்தில் தொடர்ந்து தங்கப்பதுமை படத்திற்காக ஒலிக்கும் குரல்கள் டி எம் சவுந்தரராஜன், பி லீலா.

0: மெல்லிசை கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லின் நிகம். सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा. नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही.
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं.
3: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट.
1: सेना प्रमुख की ये टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है. प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे. वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है. ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा. इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया. प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया. उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था. सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है. पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है. डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है. विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है. घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. त्रिपुरा में कानून

0: सर, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Excitement is building among the Indian diaspora in the Netherlands as Prime Minister Narendra Modi prepares to address the community this afternoon during his official visit. Thousands of Indian community members are expected to attend what organizers are calling a historic address. The event will be a highlight of the Prime Minister's trip to the country. Prime Minister Modi reached the Netherlands late last night to a warm reception. Members of the Indian community, representing different age groups, regions and faiths, gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
2: Modi Modi Modi Modi Modi Modi Modi ji
1: The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora, and India's global outreach. Indian Army Chief General Upin Dwivedi today said that Pakistan must stop harboring terrorists and operating against India. Speaking at Sena Samvad in New Delhi, Mr. Dwivedi said that if Pakistan continues these activities against India, then they will have to decide whether Pakistan wants to be a part of geography or history.
3: I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not.
1: In a significant move to strengthen the law and order framework in Tripura, the Ministry of Home Affairs has officially sanctioned the raising of an additional inter-reserve battalion. The centre has sanctioned a one-time financial grant of 50 crore for its establishment and up to 30 crore for infrastructure development. This new unit will primarily focus on counter-insurgency operations and border guarding, with the centre retaining the authority to deploy these personnel anywhere across the country as needed. Sikkim is observing its statehood day today, marking its transition from a monarchy to becoming the 22nd state of India in 1975. Vice President

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के

0: द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था।

0: گونج اٹھا۔ सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था,
1: नहीं दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई।

0: श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை.

0: ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളാണ് നാം കേട്ടത്.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नीदरलैंड्स दोस्ती का प्रतीक है. प्रधानमंत्री ने हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम में हैग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है.
2: नीदरलैंड्स के समाज और यहाँ की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है. मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ. मैं यहाँ की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ.
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर का तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है. ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है. भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है. प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे. इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है. अपनी यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होगी. नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं. उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था. सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित अपने आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई. इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है. बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है. नोटिस में सीबीएसई ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं. भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेजपिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की है. गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार भारत को नशामुक्त देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच का आदेश दिया है. अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं. इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं. राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है. ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा. बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड

ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोह सजेफेई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The Knight Riders will take on Gujarat Titans at the iconic Eden Gardens this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Meghalaya and South Interior Karnataka during the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: நேரம் 4:10.
2: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.
1: தேநீர் நேரம் ஒலி உலா வரும் நேரம் இது. பாடலை கேட்கும் முன்
3: நமஸ்கார், மேன் ஹூ கைலாஷ் கேர் और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: tracy.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रेतियों से संबंधित।
2: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट गुजरात, PMSSY नर्सिंग कॉलेज एम्स राजकोट के लिए नियमित आधार पर प्रोफेसर सह प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पद का नाम है प्रोफेसर सह प्राचार्य। वेतन स्तर होगा 13, 7वें CPC के अनुसार। रिक्ति है 1 अनारक्षित। प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड, विस्तार में विज्ञापन एवं जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। www.aimsrajkot.edu.in यहां पर जाएं और जानकारी प्राप्त करें। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें 3 वर्ष की अवधि तक उसे बढ़ाया जाएगा। इन पदों के नाम की जानकारी आप तक हम दे दें। PGT गणित में 1 पद है, काउंसिलर के लिए 1 पद है, नर्सिंग सहायक के लिए 1 पद, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के लिए 1 पद, PEM PTI सह मेट्रन महिला 2 पद, सामान्य कर्मचारी 2 पद। संविदा की कुल अवधि किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। हालांकि कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 11 महीने पूरे होने तक स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा कार्य निष्पादन समीक्षा और संस्थागत आवश्यकता के आधार पर अनुबंध को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ईमेल से आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख है वो है 18 मई 2026, और इंटरव्यू जो शेड्यूल्ड है वो है 22 और 23 मई 2026। आपको हम वेबसाइट की जानकारी दें ताकि आप वहां से आवेदन पत्र और इससे संबंधित सारे शर्तें पात्रता देख सकें। www.sainikschoolpunglava.nic.in से डाउनलोड कर सकें। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड श्री विजयपुरम अनिटको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के 1 पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं aniidco@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप जानकारी ले सकते हैं। सैनिक स्कूल सतारा। सैनिक स्कूल सतारा में कुछ रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। TGT गणित में अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। TGT हिंदी के लिए अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर। TGT सामाजिक विज्ञान अनारक्षित 1 स्थान रिक्त है, संविदात्मक। TGT मराठी में अनारक्षित 1 पद रिक्त हैं, संविदात्मक। कला शिक्षक अनारक्षित 1 पद रिक्त है, जो कि संविदात्मक ही होगा। संगीत शिक्षक में भी 1 पद रिक्त है अनारक्षित, और प्रयोगशाला सहायक विद्यालय चिकित्सा अधिकारी दोनों में 1-1 स्थान अनारक्षित, संविदात्मक आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय मेट्रन छात्रावासों के लिए अनारक्षित है ये पद, 3 स्थान यहाँ रिक्त है, संविदात्मक। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा PO बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार जिला सतारा महाराष्ट्र के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्र और लघु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को बाद में सूचित की जाने वाली तिथि को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्कूल का, www.sainiksatara.org.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
3: This program was produced and presented by The New

0: Services Division of Akashvani.
1: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। कुछ ही देर में हम कार्यक्रम सुनेंगे परिक्रमा।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। कार्यक्रम परिक्रमा में मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
4: नमस्कार वैष्णवी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर लिसनर्स। इट्स अ ब्यूटिफुल सैटरडे इवनिंग एंड टाइम फॉर आवर डेली शो परिक्रमा। लिसनर्स, 30 मिनट्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट पैकेज ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट कॉल्ड डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्स्यूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड अ फ्लेवर ऑफ म्यूजिक टू। All this and much more over the next 30 minutes. And Vaishnavi, let's first begin with the news headlines.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम।
4: Several important agreements expected to be signed, including in the fields of semiconductor chips, AI and bilateral trade.
3: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे।
4: वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्स रीवेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स इश्यूड सिंस 2011।
3: सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की।
4: एंड इन बैडमिंटन, इंडियन ड्यूओ सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी एंटर फाइनल्स ऑफ थाईलैंड ओपन आफ्टर अ थ्रिलिंग विक्ट्री ओवर मलेशियन पेयर इन द सेमीफाइनल्स। And listeners, now time for our discussion segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about Sikkim's 51st Statehood Day and Prime Minister's visit to the UAE. Vaishnavi, Sikkim, it's a beautiful land where mountains touch the clouds.
3: Mm-hmm.
4: But beyond its breathtaking beauty lies a story that makes every Indian proud. Today, Sikkim is celebrating its 51st Statehood Day, and across the country, wishes have poured in from the nation's top leaders. President Draupadi Murmu describes Sikkim as a shining example of sustainable development.
3: राष्ट्रपति ने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता की सराहना की। वास्तव में सरबजीत, अगर हम देखें तो इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो सकता है। सिक्किम दुनिया का पहला और एकमात्र पूरी तरह से जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य है, जहाँ विकास और प्रकृति एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ते हैं।
4: एब्सोल्युटली वैष्णवी, सिक्किम इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेयर वी हैव सीन growth, but not at the cost of nature, not at the cost of rivers, forests and clean air.
3: बिल्कुल, यहाँ के किसानों ने जैविक खेती को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। प्रकृति को सहेजते हुए पर्यटन का विकास किया गया और आधुनिकता के इस दौर में भी स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखा है।
4: वैष्णवी, इट्स बीन अ जर्नी फॉर सिक्किम, एंड ऑफिशियली सिक्किम बिकेम इंडियाज 22nd स्टेट ऑन दिस डे इन द ईयर 1975, एंड दैट इज व्हाई स्टेटहुड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। बट द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हैड कंटिन्यूड थ्रू आउट द ईयर, इवेंचुअली कल्मिनेटिंग इन अ ग्रैंड सेरेमनी इन अप्रैल दिस ईयर, Prime Minister Modi joined the people of the state in Gangtok. Let's share a detailed report on this with our listeners.
5: 16th May is celebrated as Sikkim Day. As on this day in 1975, Sikkim became part of India.
6: Initially, Sikkim was under Chogyal dynasty rule during the 17th century.

0: However, by 1890, it became a protectorate state under British rule, who used it as a buffer state between China and British India. In 1947, as Sikkim became a part of India unofficially, its foreign policy, security and communication came under the realm of India, while maintaining its independence at the same time.
1: In 1973, the people started demanding a responsible government and a civil disobedience movement was established against the monarch. A referendum was held in which 97.5% of voters supported abolishing the monarchy. This led to Sikkim's official merger with India. To enable the incorporation of the new state, the Indian Parliament amended the Indian Constitution.
0: First, the 35th Amendment laid down a set of conditions that made Sikkim an associate state. A month later, the 36th Amendment repealed the 35th Amendment and made Sikkim a full state, adding its name to the first schedule of the Constitution.
2: इस दौरान प्रधानमंत्री ने सिक्किम में मिले स्नेह और आत्मीयता का भी उल्लेख किया। श्रोताओं, जो भी कभी पूर्वोत्तर गया है, वे इस भावना को भली भांति समझ सकता है। कई बार मुस्कान के साथ परोसी गई स्थानीय चाय की एक प्याली भारत की एकता और अपनत्व का एहसास गहराई से करा देती है।
3: Yes, and Vaishnavi, heaven of the East. That's how Prime Minister described this beautiful state. And interestingly, this did not sound like a political line. It sounded personal.
2: बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने connectivity, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, खेल और युवाओं के लिए अवसर के बारे में बात की. क्योंकि दशकों से हिमालय क्षेत्रों के कई हिस्सों में लोगों को मुश्किल सड़कों, सीमित सुविधाओं और कम अवसरों से जूझना पड़ा रहा है.
3: Union Home Minister Amit Shah also praised Sikkim's achievements, saying the state continues to inspire the nation, whether through organic farming or redefining mountain tourism. The phrase redefining mountain tourism means a lot, Vaishnavi. Tourism in many places often becomes overcrowded and chaotic, but Sikkim offers something different. Clean streets, respect for nature, quiet monasteries and local markets selling handmade products.
2: बिल्कुल सही कहा आपने सौरभ जी. तो कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम सिर्फ तस्वीरें लेके वापस नहीं लौटते हैं, बल्कि हम अपने वहां से शांति, सुकून और खुशी का एहसास लेकर के भी लौटते हैं. और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को सिक्किम घूमने और वोकल फॉर लोकल पहल के तहत वहां के स्थानीय उत्पादों तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया.
3: Absolutely, Vaishnavi, and the Honorable Prime Minister has at various fora, you know, spoken about vocal for local, and he has been encouraging the citizens to go in for products made in the country itself. So because, you know, what is the reason behind this? Well, when someone buys local hand-woven products, especially from Gangtok, or tastes organic produce grown in Sikkim's villages, they are not only shopping, they are helping preserve livelihoods, traditions and an entire way of life.
2: वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान श्री सिंधिया नामची पर्यटन सर्किट, भालेडुंगा स्थित स्काई वॉक परियोजना और नाथुला के निकट कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण पर्यटन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे.
3: Well, for many years, people spoke about the Northeast as if it was distant from the rest of the world, cut off, not a part of the mainstream. But today, the conversation is changing. Roads, railways, tourism, sports, digital connectivity and cultural exchanges are bringing the region closer to the national mainstream while preserving its unique identity.
2: प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर को भारत की अष्टलक्ष्मी बताया. ये 8 ऐसे राज्य हैं जो अपार शक्ति, सौंदर्य और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, और ये भावना सिक्किम से अधिक कहीं और दिखाई नहीं दे सकती हमें.
3: एंड दिस इंडीड वैष्णवी इज इंट्रिगिंग. व्हाट ट्रूली मेक्स इंडिया सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी? Is it our languages, our food, our festivals, our landscapes?
2: मुझे लगता है सरबजीत, इस सब सारे प्रश्नों का जवाब यही है कि मठों, ऑर्किड, बर्फों से ढकी चोटियों और जैविक खेतों से सजा एक छोटा सा हिमालय राज्य भी उतने ही गर्व और आत्मीयता से स्वयं को भारतीय महसूस करता है जितना राजस्थान के रेगिस्तान, केरल के समुद्र तट या दिल्ली की गलियां. यही भारत की असली ताकत है, विविधता में एकता और हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान के साथ जुड़ा राष्ट्रीय गौरव.
3: वेरी वेल सेड वैष्णवी. डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट आइडेंटिटीज, येट वन हार्ट बीट. एंड सिक्किम्स जर्नी ब्यूटिफुली रिमाइंड्स अस ऑफ दैट ट्रूथ.

0: श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात दौरे के बारे में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मित्रता अब केवल व्यापारिक संबंधों और तेल आपूर्ति तक सीमित नहीं रह गई है। आज ये साझेदारी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भविष्य को नई दिशा दे रही है।
1: एब्सोल्युटली, वेरी वेल स्टेटेड वैष्णवी। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीसेंट विजिट टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज टेकन दिस पार्टनरशिप to an entirely new level. But it's very important to look into this question that what does this really mean for the ordinary Indian? Does it mean cheaper and more secure energy for our homes? Does it mean more jobs for young engineers and skilled workers? Or does it mean India is preparing itself to lead the technologies of tomorrow?
0: इन सभी सवालों का जवाब हाँ है और इसके संकेत अभी से स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। सदियों से भारत और संयुक्त अरब अमीरात अरब सागर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। आधुनिक कूटनीति की शुरुआत से बहुत पहले ही दोनों देशों के व्यापारी इसी समुद्री मार्ग के जरिए मसालों, मोतियों, खजूर और कपड़ों का व्यापार किया करते थे।
1: But Vaishnavi, today the relationship has evolved far beyond trade ships and business deals. It has become a partnership built on trust, ambition, shared dreams for the future. And don't miss the scale of this growth. Trade between the two countries has crossed $100 billion for the first time.
0: जी सरबजीत, और एक पल के लिए अगर हम सोचे तो हर दिन हजारों व्यवसाय, कामगार, निर्यातक और परिवार इस मजबूत होती साझेदारी से लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे सूरत का कोई कपड़ा व्यापारी हो, कोची का कोई सी फूड निर्यातक, वहीं बेंगलुरु का कोई स्टार्टअप संस्थापक या दुबई में कार्यरत कोई तकनीशियन, ये सभी भारत के इस वैश्विक मंच पर तेजी से उभरने की इस बड़ी कहानी का हिस्सा है।
1: जी, एंड वैष्णवी, वी कैन नॉट मिस ऑन दिस दैट वन ऑफ द बिगेस्ट आउटकम्स ऑफ दिस विजिट इज एनर्जी सिक्योरिटी। इट्स अ बर्निंग टॉपिक इन टुडेज टाइम्स। एंड ऑफकोर्स, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ एवरी मॉडर्न नेशन, फ्रॉम द एलपीजी सिलेंडर इन अ मिडिल क्लास किचन टू फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। Energy touches everyday life.
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अब कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों के क्षेत्र में अपने सहयोग और मजबूत किया है। इसका मतलब ये है कि भारत खुद को इस तरह तैयार कर रहा है कि वैश्विक उथल पुथल या अंतर्राष्ट्रीय संकटों के दौरान भी वे मजबूत से बना रहे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई परिवार आगे आने वाले मुश्किल समय के लिए बचत करता है। एक जिम्मेदार परिवार जरूरी चीजों का भंडारण करता है और सोच समझ कर योजना बनाता है।
1: Absolutely, and India is now doing the same at a national scale. But the visit was not only about oil and trade, it was about the future. A future driven by artificial intelligence, supercomputing, advanced manufacturing and innovation. India and the UAE are partnering to set up an 8 exaflop supercomputing cluster, and that sounds highly technical, but its impact could touch millions of lives. Faster supercomputers can help India improve weather forecasting, scientific research, healthcare systems, defense technology and artificial intelligence innovation.
0: श्रोताओं, आज किसी छोटे शहर में बैठा एक छात्र भी कल इन्हीं साझेदारियों से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण तैयार कर सकता है। अवसरों का दायरा इतना व्यापक हो चुका है, और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आता है, क्या भारत एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभर सकता है?
1: Yes, indeed. The question is equally intriguing, Vaishnavi, and indeed, this is also a milestone for the country. The answer, of course, is slowly unfolding along the country's coastlines. A major agreement has been signed for developing ship repair and maritime infrastructure in Gujarat. Alongside this, there will also be skill development programs for India's maritime workforce.
0: श्रोता, इसका अर्थ ये है कि वेल्डर, टेक्नीशियन, इंजीनियर, लॉजिस्टिक पेशेवरों और शिपिंग व जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं।
1: Yes, Vaishnavi, and so interesting and nice that a young person from a coastal town who once searched for jobs abroad may soon find world-class opportunities within India itself. And that is the real transformation.
0: जी बिल्कुल, और इसी दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी और गहरा हुआ है। भारत अब रक्षा क्षेत्र को केवल बाहर से उपकरण खरीदने तक ही सीमित नहीं मानता, अब इसका जोर मेक इन इंडिया की सोच के अंतर्गत सह विकास, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है।
1: एंड perhaps the most beautiful part of this relationship, Vaishnavi, lies

0: in the people-to-people connection. Millions of Indians living in the UAE are contributing every single day. Doctors, teachers, engineers, shopkeepers, entrepreneurs, construction workers and professionals. Their hard work has built bridges stronger than diplomacy itself.
1: श्रोताओं, घर भेजा गया हर रेमिटेंस भारत में कई सपनों को सहारा देता है. किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी पारिवारिक व्यवसाय की शुरुआत, एक नए घर का निर्माण या बेहतर भविष्य की उम्मीद. यही कारण है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात की साझेदारी इतने सारे भारतीयों को गहरे अपनत्व का एहसास कराती है.
0: एंड वैष्णवी, टुडे इंडिया इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द साइडलाइंस वेटिंग फॉर द फ्यूचर टू अराइव. इनफैक्ट इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बिल्डिंग दैट फ्यूचर. एंड परहैप्स द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस विजिट इज दैट इंडियाज राइज इज नो लॉन्गर अ प्रेडिक्शन. इट इज बिकमिंग अ रियलिटी दैट द वर्ल्ड इज एक्टिवली पार्टनरिंग विद. एंड दैट इज अ स्टोरी एवरी इंडियन कैन फील proud of.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है.
0: Yes, a major step towards preserving Nagaland's indigenous heritage has taken shape with the inauguration of the Nagaland Indigenous Tribes Cultural Resource Center in Kohima this month. The center aims to preserve, document and promote the rich traditions of the state's indigenous communities through art, crafts, music, folklore and storytelling. More details on this from our Kohima correspondent.
2: The Nagaland Indigenous Tribes Cultural Resource Center in Kohima was inaugurated by Advisor for Art and Culture, Government of Nagaland, K. Kongam Konyak on May 7. Constructed at a cost of over 1,283 lakh rupees, the project was jointly funded by the central and state governments. The three-story building houses a district museum, library, seminar hall, and dedicated tribal spaces representing all 16 tribes of Nagaland. The facility is expected to serve as a hub for exhibitions, research, learning, documentations, and cultural exchange, while also fostering unity and mutual understanding among tribal communities. Advisor for Art and Culture, K. Kongan Konyak, described the center as a living cultural space for future generations.
3: This center not merely as a place to preserve the past, but as a living cultural space where tradition can be actively practiced, shared and carried forward to future generations.
2: The project, first sanctioned in 2011, faced delays after funding was discontinued. The state government later revived the project using its own resources, leading to its completion earlier this year. The Nagaland Indigenous Tribes Cultural Resource Center now stands as a symbol of cultural pride, unity and preservation for generations to come. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
1: श्रोताओ, अब रुक करते हैं कोहिमा से पानाजी की ओर. खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और शून्य हानि कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर बल देते हुए 42वें खनन सुरक्षा सप्ताह 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल गोवा में आयोजित किया गया. एक रिपोर्ट.
4: इस अवसर पर खान सुरक्षा महानिदेशालय के उप महानिदेशक रामतार मीना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने तथा शून्य हानिकारी संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा,
5: हमारा जो पिछला सेफ्टी वीक का फंक्शन हुआ था 2016-17 में हुआ था, 2018 से हमारी माइंड से काफी बंद हो गई थी और हम सबको ये खुश होना चाहिए कि इस वर्ष हमारा कई माइंस चालू हुई है. हम लोग इस बार जो सेफ्टी वीक का ये फंक्शन कर रहे हैं इसमें करीब 50 माइंस पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें गोवा राज्य की माइंस है और महाराष्ट्र की कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग का है कुछ माइंस, रत्नागिरी की एक तो माइंस है और रायगढ़ का कुछ माइंस है. तो सुरक्षा के प्रति हमारे जो कामगार हैं उनकी जो जागरूकता है उसको निरंतर बढ़ाने के लिए इस तरह का ये सेफ्टी का आयोजन किया जाता है.
4: कार्यक्रम में DGMS के वरिष्ठ अधिकारी, खनन कंपनियों के प्रतिनिधि तथा उद्योग से जुड़े भागीदार उपस्थित थे. गोवा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी से लगभग 50 खदानों ने 15 से 20 दिसंबर 2025 तक चले इस सप्ताह भर के आयोजन में भाग लिया था. इस दौरान सेमिनार, ट्रेड टेस्ट और फर्स्ट एडर प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य खदान सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था. समारोह में एक स्मारिका का विमोचन किया गया, जिसके बाद विभिन्न सुरक्षा श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार वितरित किए गए. अगले खान सुरक्षा सप्ताह की मेजबानी वेदांता लिमिटेड

0: देश के लिए हर पल तैयार रहने का प्रतीक बन जाती है। और ऐसी ही शख्सियत थे कर्नल धर्मवीर सिंह। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे अपने मजबूत नेतृत्व, अनुशासन और बहादुरी के लिए पहचाने जाते थे। सेना में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और अपने साथियों के बीच सम्मान हासिल किया।
1: Listeners, we are paying tributes today to the great classical singer Manik Varma. She was honored with the Padma Shri Award in 1974 for her contribution to the field of music. We bring this beautiful devotional number sung by her.

0: Wasn't that beautiful, Vaishnavi?
1: Ji, bilkul.
0: And we are also remembering Maria Gethena Agnes. Today is her birth anniversary. Maria was an Italian mathematician, philosopher, theologian and humanitarian. The interesting part is that she was the first woman to write a mathematics handbook, the first woman appointed as a mathematics professor at a university, and the second woman appointed as a professor on an overall basis. She's credited with writing the first book discussing both differential and integral calculus. The Britannica defines her as to be the first woman in the Western world to have achieved a reputation in mathematics.
2: एक गहन आत्मविश्वास से भरकर सुबह निकल पड़ता हूँ घर से ताकि सारा दिन आश्वस्त रह सकूँ। एक आदमी से मिलते हुए मुस्कुराता हूँ, वे एकाएक देख लेता है मेरी उदासी। एक से तपाक से हाथ मिलाता हूँ, वे जान जाता है मैं भीतर से हूँ अशांत। एक दोस्त के सामने खामोश बैठ जाता हूँ, वे कहता है तुम दुबले बीमार क्यों दिखते हो। जिन्होंने मुझे कभी घर में नहीं देखा वे कहते हैं अरे आप टीवी पर दिखे थे एक दिन। यही खासियत ही मंगलेश डबराल की कविताओं की कि वे बिना किसी भारी शब्दों के सीधे इंसान के भीतर चल रही भावनाओं को सामने ले आते थे। उनकी रचनाएं पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे ही मन की बात कह रहा हो। आज ही के दिन वर्ष 1948 में जन्मे मंगलेश डबराल हिंदी की आधुनिक कविता के प्रमुख और सम्मानित रचनाकारों में गिने जाते हैं।
0: और वैष्णवी, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा दैट शाम का समय है, इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग और इट्स अ सैटरडे इवनिंग, सो यू नो बिफोर वी वाइंड अप दिस प्रोग्राम व्हाइल वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेट फनी मजुमदार, टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी, वी मैनेज टू ब्रिंग two songs for our listeners from some of his classic movies. Fani Majumdar worked in Bengali and Hindi cinema. So our production team has brought in these two beautiful numbers. Let's hear them out.

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை வி சிவரஞ்சினி, வி நளினகாந்தி ஆகியோரின் பாட்டு கேட்டீர்கள். டாக்டர் எம் நர்மதா அவர்கள் வயலின், திருச்சி ஜி அரவிந்த் அவர்கள் மிருதங்கம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியில் செய்த அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना

0: गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை.
3: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.
2: நேர்களை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இந்த அலைவரிசையில் இனி இடம்பெறவுள்ள நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பு. ஏழு 10 திரைகாலம், 7:50 செய்தி கதம்பம், 8:10 பக்கத்து வீடு நாடகம் எழுதியவர் அகஸ்டோ, 8:40

0: Market Matters, but do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: शुभ संध्या, नमस्कार, अभिवादन. आप जुड़ गए हैं मार्केट मंत्र से, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरों पर चर्चा करने वाले हैं. श्रोताओं, आज शनिवार है और आज हम आपके प्रश्नों को भी सीधा प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. ये नंबर है 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता हैं, वो इन नंबर पर कॉल करने से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली. शरद, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से और हमारी तरफ से भी मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत अभिनंदन.
0: वार्म वेलकम शरद.
2: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद राजेश, सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडियन डायस्पोरा इन नेदरलैंड्स, हाइलाइट्स देयर रोल इन डीपनिंग बायलैटरल टाइज़. Benchmark domestic indices tumble over 2% this week, and global crude oil prices surge as combative comments from US and Iran dim hopes of de-escalation in West Asia.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय को संबोधित कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की भूमिका को रेखांकित किया. इस सप्ताह प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में 2% से अधिक की गिरावट आई और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम, अमरीका और ईरान की टिप्पणियों के कारण पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कम होने की संभावनाओं के कारण बढ़ गए.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक व्यवधानों से निपटने के लिए भारत और नेदरलैंड्स एक विश्वसनीय, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. नेदरलैंड्स के हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने डच समाज में भारतीय प्रवासियों के योगदान और भारत नेदरलैंड्स के बीच मित्रता के जीवंत सेतु के रूप में उनकी भूमिका की सराहना की. श्री मोदी ने रेखांकित किया कि प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रमुख क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं और नेदरलैंड्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत और बढ़ते व्यापार तथा आर्थिक संबंधों पर बल देते हुए कहा कि नेदरलैंड्स यूरोप में भारत के सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक है, साथ ही इसके प्रमुख निवेश साझेदार में से भी एक है. श्री मोदी ने आगे ये भी बताया कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए नए अवसर खोलेगा.
0: We have two callers online with us now, one from Delhi and the other from Mumbai. We first go on to say a big hello to Mahesh from Delhi. A warm welcome, Mahesh.
3: My name is Mahesh Chavra. I'm from Pitampura, Delhi. My question is, in current scenario, should we continue with the SIP or should we stop our ongoing SIP? So how do you see the market in the coming futures?
2: Well, Mahesh ji, that's a very relevant question, because this is a question which comes to the minds of most of the SIP contributors. You know, SIP is called Systematic Investment Plan. And you know, Rajesh and Prachi, I have renamed it. I've called it Sabr Investment Plan. Or I call it as Smart Investing, Patient Investing.

0: actually, SIP. So I think some of the part of my answer is in these expansions of the acronym. But then, you know, this is what SIP is, Mahesh ji, is meant for. Then the times when the market is down, and if you continue to do SIP, you are effectively buying at lower levels. And I also tell people that, you know, SIPs are meant for 10 years. If you take a period of 10 years, it would include 2 American presidential terms. In fact, 2.5 presidential terms. 10 years can take care of things like COVID. 10 years can take care of things like Iran war and so on and so. So when you have a long-term perspective, you will realize that the SIP or the mutual fund has overcome all these ups and downs, these major events. So therefore, Mahesh ji, the answer to your question is yes, you must continue. You should not discontinue. In fact, these days when you're contributing to SIP, your AMC is buying at lower levels, which is good for you. It will maximize your return in the times to come. I hope I've answered not just you, but the millions of people who want to know what should they do with their SIPs. Please remember the new name, Sabr Investment Plan.
1: आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं अमित से, ये मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं।
2: सर थैंक यू। अशोक जी जब प्रोग्राम रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिटेल में आंसर करते हैं सर। सर मेरे दो सवाल थे कि सपोज इन्वेस्टमेंट है माँ और लड़की के नाम पे
0: जी,
2: और वो इन्वेस्टमेंट एफडी जॉइंट में है
0: जी,
2: तो वो इन्वेस्टमेंट पहली एज पर इनकम टैक्स के दृष्टि से वो किसकी समझी जाएगी, ज्वाइंट फर्स्ट होल्डर की, ये पहला सवाल। और दूसरा, फर्स्ट होल्डर की यदि डेथ हो जाती है तो एफडी जो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी तो वो इन्वेस्टमेंट फिर बाद में किसके नाम पे रहेगी, यानी वो मुझे ऐसे दो सवाल थे सर। मैं रेडियो के सवाल आपका आंसर सुनता
0: हूँ जी। अमित, आप आज शरद कोहली को बुलाया हुआ है, अशु तो कोई नहीं बुलाया, मैंने खाली आपने नाम बोला था। देखिए आपका जो सवाल है उसमें मदर एंड डॉटर की आपने बात करी, तो अगर इसमें दो सिनेरियो उत्पन्न होते, एक तो अगर डॉटर मेजर है यानी कि 18 साल से ऊपर की उम्र की हैं, तो एफडी जो की हुई है इसमें ये देखना होगा कि एफडी में कॉन्ट्रीब्यूट किसने किया है, ये अमित देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सारा पैसा मदर का है तो फिर ये मदर को ही अपने इनकम में दिखाना चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है जहाँ डॉटर मेजर होती है 18 साल से ऊपर की है, वैसे तो अगर डॉटर अगर 18 से कम की है, माइनर है, तो फिर तो ये मदर में क्लब हो जाएगा, इनकम टैक्स में क्लबिंग प्रोविजंस होता है और ITR में आप जाएंगे तो उसमें इनकम फ्रॉम अदर्स पर्सन शेड्यूल में मैंशन होता है, वहाँ मैंशन हो। अगर डॉटर मेजर है तो कभी कभी आधा आधा भी ले लिया जाता है। अब दूसरा आपने पूछा कि अगर डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर ऐसे में वो जो सेकेंड होल्डर है वो उसका ओनर बन जाता है और सेकंड होल्डर को फिर सारा का सारा अपने में दिखाना पड़ता है। या ऐसा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है उन्होंने अपनी विल में क्या लिखा है। अगर मान लीजिए मदर का कोई और लीगल एयर है, मतलब कोई और वारिस है, तो फिर ये उनको उसको और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आता है प्राची और राजेश कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है साल के बीच में वित्तीय वर्ष में, तो उनको उनकी जो रिटर्न जिस डेट तक मृत्यु होती है तो उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल करता है। फिर बीच का एक ऐसा फेज आता है जब उनका अभी तक वारिस अपॉइंट नहीं हुआ होता, तो उस फेज में एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड करके फाइल की जाती है, और फिर जब वारिस अपॉइंट हो जाता है तो फिर वारिस के नाम से रिटर्न जाती है। मैं उम्मीद करता हूं अमित आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, मैंने आपको सारे पहलू इसके बता दिए।
3: अमित झा फ्रॉम दिल्ली जॉइंस अस नाउ। अमित झा, वार्म वेलकम।
4: हाँ नमस्कार राजेश सर।
3: नमस्कार
4: कोहली सर। नमस्कार सर।
0: हाँ नमस्कार अमित
4: सर। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हालिया दिनों में आप भी जानते हैं सर कि हमारी ऊर्जा पे निर्भरता जैसे बात है, ऑयल एंड गैस हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं
0: जी,
4: ज्यादा है
0: जी।
4: तो ये तो ठीक है सर, बट क्या हम अन्य स्रोतों में अपने देश में कुछ रिन्यूएबल एनर्जी जाए इस तरह का है, और कितना प्रतिशत के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पानी, पनबिजली, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, जो भी है बढ़ रहे हैं। एक सर बायोगैस की कोई कंसेप्ट अपने यहाँ पे चल सकता है क्या सर? और सर जो IT कंपनी अभी भी IT के नहीं निकल पा रही है, वो क्लाउड का कब तक खत्म होगा, मुझे तो संभव समझ नहीं आ रहा है सर। धन्यवाद
0: अमित। आपने जो पहला सवाल है, मुझे जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व कर रही है, आपने पहले भी पूछा था कि रिन्यूएबल एनर्जी में भारत का कितना योगदान। देखिए सोलर है, विंड एनर्जी है, बायोफ्यूल है, और इस पे देश में लगातार और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और इसका जो योगदान है वो ओवरऑल में बढ़ता जा रहा है। और अब जो हालात पैदा हुए हैं उसमें मुझे लग रहा है हमने एक्सेलरेटर दबा दिया है कि अब इस पर जहाँ जहाँ भी काम चल रहा है इस पर और स्पीड पकड़ लिए, तो आप इस मामले में निश्चिंत रहे। पर अभी क्या है कि ये संकट जैसे अभी 2-2.5 महीने हुए हैं, तो इसमें हम ऐसा नहीं हो सकता कि 2 महीने में हम सब कुछ सोलर पर कर दें, सब कुछ हम बायोफ्यूल पर कर दें, सब कुछ

0: विंड एनर्जी पे चलने लग जाए, गैस की जगह हम कुछ और। और दूसरा आपने बायोगैस के पूछा, बिल्कुल बायोगैस पे काम होता है। बायोगैस तो किसान बनाते हैं, मुझे याद है वो गोबर और अन्य कंपोस्ट उसको
1: जी
0: बोलते हैं, कंपोस्ट
1: जी
0: से बनाई जाती है। दूसरा आपने आईटी कंपनीज का पूछा। देखिए अमित, ऐसे जनरल में कहना तो बहुत मुश्किल है, कुछ आईटी कंपनीज को वाकई में सेटबैक हुआ है एआई की वजह से और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी से, पर ज़्यादातर आईटी कंपनी जो भारत की बड़ी हैं, क्योंकि हम यहाँ नाम नहीं लेते तो मैं इसको बहुत स्पेसिफिक तो नहीं बता सकता, पर ज़्यादातर आईटी कंपनीज भारत की बहुत बड़े लेवल पर अपने आप को तैयार कर रही हैं इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग चैलेंज से, यानी कि आने वाला जो उनके सामने चैलेंज है उससे सामना करने के लिए। अब ये तो आपका सवाल है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी कंपनी, तो सारी कंपनी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राची राजेश के भी, कांट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश, कि हम सारी आईटी कंपनीज को कह दें कि उनको दिक्कत आ रही है। अब ये तो आईटी कंपनी टू आईटी कंपनी डिफर करेगा, पर आपको मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ज्यादातर जो बड़ी आईटी कंपनीज जिनकी मार्केट कैप बहुत हाई है, उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग में और रोबोट्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत भारी मात्रा में R&D और इन्वेस्टमेंट किया है। मैं वो अपने आप को तैयार कर रही है, ऐसा नहीं है कि सारी भारत के आईटी कंपनीज का बिजनेस बंद हो जाएगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा, जब वो अपने प्रोडक्ट्स और टूल्स सामने लाएंगे, मुझे उम्मीद है कि उनका मार्केट वैल्यूएशन भी इम्प्रूव होगा।
1: और जितेंद्र जयपुर से जुड़ रहे हैं, जितेंद्र
2: हेलो।
1: जी
2: हाँ सर, ये अभी जैसे आपने अभी कुछ उत्तर दे दिया हमारा उसी से प्रश्न था, तो हमारा जैसे आईटी सेक्टर में निफ्टी 50 में जो है ना वो क्वार्टरली SIP किया हुआ है,
0: जी
2: तो 1300-1400 रुपया पे था, अभी 1100 रुपया पे भी आ गया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि और ऐड कर लूँ, कि आपने अभी जो बताया अपने को तैयार कर रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कोई गलत तो नहीं है ना सर निफ्टी 50?
0: देखिए निफ्टी 50 में तो जितेंद्र, जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं सभी आती हैं। आप शायद निफ्टी आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी भी है जिसमें सारी आईटी की कंपनीज आती हैं, तो उसमें जैसा मैंने आपको कहा कि भारत की ज़्यादातर कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। बिल्कुल, तो जवाब तो मैंने दे ही दिया कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं और कंपनीज का चयन अच्छा करते हैं, अगर आपने इंडेक्स में किया हुआ है, इंडाइसिस में किया हुआ है, तो आई थिंक उसमें सभी तरीके की कंपनीज आ जाती हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लंबे वक्त में ये कंपनीज अपने आप को डूबने नहीं देंगी और ये कंधे से कंधा मिला के चलेंगी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज के साथ, क्योंकि इन कंपनी का जो जो लेवल है ऑपरेशन का वो बहुत ही ऊंचा है और इनकी इनकी मार्केट कैप भी बहुत अच्छी है। जी
3: फ्रॉम नोएडा वी आर जॉइंड बाय वीरेंद्र। वीरेंद्र वार्म वेलकम।
4: थैंक यू कोहली जी, नमस्कार।
0: नमस्कार वीरेंद्र जी,
4: एक बहुत बड़ा इशू मेरे पास है AIS से रिलेटेड।
0: जी
4: आप इसका कोई बढ़िया सा नाम भी देते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा।
0: आईना इसे समझिए।
4: हाँ आईना इसे समझिए
0: जी।
4: मेरे AIS में एक आ गया है, किसी कंपनी से मैंने कार खरीदी है और मेरा TCS कटा है ओरिक्स कॉर्पोरेशन।
0: अच्छा।
4: और वो 26AS में भी आ रहा है
0: जी।
4: और मैंने कभी कभी आप जो बताते हैं उसमें है उस इंफॉर्मेशन डिनाइड करके मैंने लिख भी दिया है
0: जी।
4: मुझे याद है एक एक लेडी भी शायद ओरिक कॉर्पोरेशन टाइप का है, बात करके वो बात की थी, मार्केट मंत्रम मेरे यहाँ भी आ गया है
0: जी।
4: तो क्या चीज है, मान लो कोई AIS देखेगा नहीं और ये कंपनी जैसे घपला कर देंगे, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर इतना कमजोर है कि कोई दूसरा जो डीलिंग है वो AIS में आ जाए।
0: नहीं वीरेंद्र जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि AIS में अगर आ रहा है तो कहीं पैन में या किसी में कोई गलती, और अगर कोई जानबूझ के ये शरारत कर रहा है कि एक ही नाम से कई लोगों के AIS में ऐसा आ रहा है, तो आप जब लोग जब फीडबैक इसमें AIS में फीडबैक देना, मैं प्राची और राजेश को बताना चाहूंगा, AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है, मैंने उसको नया नाम दिया आईना इसे समझिए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन का आईना दिखा देता है। तो मुझे लगता है ये कहीं कोई टेक्निकल एरर है या कोई जानबूझ के अगर शरारत करता है, तो जैसे आप फीडबैक देंगे वीरेंद्र जी, और वो जो महिला जिन्होंने सवाल किया था वो भी फीडबैक देंगी और लोग भी हैं जो फीडबैक देंगे, तो इनकम टैक्स के संज्ञान में आ जाएगा कि अवश्य कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझ के ये, या तो जानबूझ के अनजाने में गलती हो रही है, उसको ठीक कर लिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, अगर आपने कोई गाड़ी नहीं खरीदी है या आपसे संबंधित ये ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसके लिए आपको जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहें, फीडबैक दें, अगर फिर भी आता है दोबारा मार्केट मंत्रा में कॉल करिए, फिर मैं आपको कोई और नुकता इसका बताऊंगा कि इसको कैसे समाधान पाना है, पर मुझे उम्मीद है आपके फीडबैक का असर होगा। ऐसी कोई धांधलेबाजी नहीं है, क्योंकि इसमें AI और डेटा बेस्ड ऑपरेशन है, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन जब आती है वीरेंद्र जी, जब बड़े लेवल पर कोई धांधलेबाजी कोई मिस्टेक सामने आ जाती है जी।
1: मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, जी अपना सवाल पूछिए।
0: गुड इवनिंग।
5: हाँ मेरा सवाल है कि ये जो शेयर मार्केट में शेयर का SIP कैसे चालू कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ प्राइस निश्चित करके हम शेयर के लिए परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं क्या, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है,

0: कि मेरे शेयर समझो मेरे ब्लड रिलेशन में लड़के के नाम पर ट्रांसफर करना है,
1: जी
0: तो उसके लिए क्या प्रावधान है?
1: रत्नाकर जी, पहला सवाल आपका शेयर्स एसआईपी से संबंधित है। देखिए, शेयर्स एसआईपी नाम की कोई ऐसी कोई स्कीम तो चलती नहीं है। शेयर्स एसआईपी जब बताया जाता है तो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तरह बताया जाता है कि आप शेयर्स भी थोड़े थोड़े करके लेते रहें बजाय एक साथ खरीदने के। तो ये तो आपको स्वतः करना पड़ेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा कि आप एक हफ्ते का या जब जब वो नीचे आए। एसआईपी ऐसा भी होता है, जब जब करेक्शन हो, अगर आपने मान लीजिए 15 दिन का या हफ्ते का हमने नियम डाल दिया और मान लीजिए उस टाइम शेयर नीचे नहीं आया, तो बल्कि शेयर्स एसआईपी में तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप नजर रखिए, उसकी प्राइस चेक करते रहिए, जब भी वो नीचे आए। तो यहां एसआईपी का मतलब वो म्यूचुअल फंड वाली एसआईपी नहीं है जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं। यहां पर एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट का तरीके के तौर पर बताया जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके। दूसरा आपने दूसरा पूछा, आपके ब्लड रिलेशन में आप शेयर्स करना चाहते हैं, तो एक ट्रांसफर फॉर्म ब्रोकर के यहाँ मिलता है, उनसे आप फॉर्म लीजिए और एक रिलीज डॉक्यूमेंट आपको फाइल करना होता है अपने डीमैट अकाउंट से, और जिस व्यक्ति के अकाउंट में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उनके अकाउंट में वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। बहुत आसान है, आप अपने ब्रोकर से संपर्क करिए, वो आपकी इसमें मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आप उनसे अगर गिफ्ट कर रहे हैं तो कोई पैसा नहीं आएगा, और अगर अगर गिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा आपके अकाउंट में वो व्यक्ति ट्रांसफर करते हैं। जी
2: श्रोताओं, अब आइए जान लेते हैं कि इस सप्ताह के दौरान हमारे प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर बाजार में 2% से अधिक की गिरावट आई, जिससे 2 सप्ताह से जारी बढ़त का सिलसिला टूट गया। पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशी निवेशकों की निरंतर निकासी, भविष्य में मुद्रास्फीति को लेकर चिंताओं और चौथी तिमाही के मिले जुले नतीजों के कारण निवेशकों का रुख सतर्क सा नजर आया। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2090 अंक यानी 2.7% गिरकर 75,238 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 532 अंक यानी 2.2% लुढ़ककर 23,644 पर आ गया। इस बीच विस्तृत शेयर बाजार में भी गिरावट आई। मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग 2.2%, जबकि स्मॉल कैप में 4.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखें तो रियल एस्टेट सबसे अधिक प्रभावित रहा और इसमें 8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद आईटी क्षेत्र की अगर बात करें तो 5.7% की गिरावट आई, जबकि ऑटो और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सूचकांकों में भी सप्ताह के दौरान 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया सप्ताह के दौरान 1.49 रुपये गिरकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर यानी 95.97 रुपये पर आ गया। और कार्यक्रम में हम जोड़ रहे हैं कर्नाटका से वीरेंद्र कुमार को। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: गुड इवनिंग मार्केट मित्र टीम,
2: गुड इवनिंग,
3: वीरेंद्र कुमार फ्रॉम कर्नाटका। शरद जी, आई हैव टू क्वेश्चंस।
1: या
3: वन इज, आई एम गेटिंग 20% रिटर्न इन सम ऑफ द स्टॉक्स आई हैव इन्वेस्टेड।
1: ओके,
3: इन दिस अनसर्टेन टाइम्स इज इट वाइज टू बुक द प्रॉफिट? वन सेकंड इज, इन आईटी, वन ऑफ द आईटी स्टॉक्स इट इज 25% माइनस।
1: Okay.
3: So should I continue to average it?
1: Mr. Virinder, your first question is whether you should book 20% profit which you are. See, I mean, it depends on the goals which you have. If your goals have been achieved, if you had set this target, I'm not sure how long you have been keeping those shares for. So if the goals have been achieved, I think you there'll be no harm in booking profits, although I do feel that the market right now is going through testing times.
2: Mm-hmm.
1: And once it recovers, your profit may also improve. So you have to check how long were you keeping it. If you have kept it for more than 1 year, then maybe I would suggest you should book profit. But if you have recently bought, then your profit is very handsome and you can probably keep it for bigger profits as well. Regarding IT stocks, I would like to talk for a minute with the permission of our respected anchors, Prachi and Rajesh. This process of, averaging is not always recommended. A lot of people talk about averaging, that if it's fallen, let me buy some more, because it can let you go into a trap also. So therefore, my advice, Virinder ji, is that you should wait for some time for IT stocks to recover, and do not average. Rather than averaging, try and use this money for buying more attractively valuated stocks. So I'm not a great fan of averaging, because I've seen a lot of people falling into the trap. Then they are not able to recover. In fact, they sink in more money into.
2: Mm-hmm.
1: So therefore, I'll not very strictly favor averaging. You can use the money for other stocks.
4: From Chennai, we are joined.

0: Hormuz. By the close, Brent crude July futures settled over 3.3% up at $109.26 per barrel, while the West Texas Intermediate June futures climbed 4.2% to end at $105.42 per barrel. Over the week, Brent surged more than 7.8% and WTI soared nearly 10.5% on uncertainty over the shaky ceasefire in West Asia.
1: बिले से हमारे साथ रवि नारायण जुड़ रहे हैं. रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्ते सभी को, शरद जी को नमस्ते. एक बड़ा फनी सा सवाल पूछ रहा हूँ
3: जी.
2: एक सारे विंडोज जिसके क्लोज हो गए हो, एज बार्ड हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं एलिजिबल ना हो, वो इसको शेयर मार्केट को अपना आजीविका का साधन बना सकता है? तो यदि बना सकता है तो सेफेस्ट मोड क्या होगा?
3: रवि जी, पहली बात तो सवाल फनी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सवाल आपका रेलेवेंट है और बिल्कुल बना सकते हैं अगर आपकी रिसर्च पूरी है, आपने उसके बारे में स्टडी पूरा किया है. तो मैं आपको सलाह दूंगा किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में आप इस काम को करें. तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होती है. तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, क्योंकि जब आप ऐसे हालात में हैं तो आपके पैसा और ज़्यादा बहुमूल्य हो जाता है. और तो मैं आपको सलाह दूंगा, खुद रिसर्च करिए, स्टडी करिए और पहले आप पेपर मनी से शुरू करिए. मैंने पहले भी एक बार ये कही थी, पेपर मनी से ट्राई करिए, देखिए आपका कितना एक्यूरेट बैठ है और उसके बाद आप इसको ट्राई करिए. पर किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में शुरू में मैं आपको सलाह दूंगा रवि जी, इसको करें जी.
1: और कोलकाता से हमारे साथ अतानु शाह जुड़ रहे हैं. कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: शरद कहली जी, मेरा प्रणाम.
3: प्रणाम.
4: मेरा जल्दी बोल रहा होगा. मेरा क्वेश्चन है, मैंने 3.5 साल पहले मैंने कुछ पैसा 78 रुपीज डॉलर मैंने भेजा था, 80,000 रुपीज टू फॉर नैस्डैक परचेज, नैस्डैक मार्केट परचेज सम अदर कंपनीज. सर, मेरा प्रश्न यही है कि इसके लिए मैंने तो W8 और W9 जो है वो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था पिछले साल में. सर, इसके लिए इज इट सर मार्केट, इज इट द मैटर ऑफ एनी इन्फॉर्म टू अवर टैक्स डिपार्टमेंट? सर
3: जी हाँ, तानू जी, मैं संक्षेप में दूंगा, समय कम है. बिल्कुल आपको यहाँ इन्फॉर्म करना चाहिए. आपको भारत में इनकम टैक्स रिटर्न में कॉलम होता है, आपका विदेशी निवेश आपको बताना पड़ता है. इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट्स जो आप होल्ड करते हैं, बिल्कुल आपको दिखाना चाहिए, वरना वो ऑफेंस माना जाता है जी.
1: शरद जी, कार्यक्रम में आने, हमारे तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस शरद.
3: माय प्लेजर. थैंक यू.
0: एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन. Prime Minister Narendra Modi addresses Indian diaspora in Netherlands, highlights their role in deepening bilateral ties. Benchmark domestic indices tumble over 2% this week, and global crude oil prices surge as combative comments from US and Iran dim hopes of de-escalation in West Asia. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास, नवाचार, RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, Prime Minister said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis.
0: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, वर्तमान में संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्रवाई, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए पूरी तरह से विद्यालय आधारित तथा आंतरिक मूल्यांकन होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकीकृत कृषि के व्यापक प्रचार प्रसार और विस्तार पर विशेष बल दिया है और कहा है कि किसानों को इसे व्यावहारिक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की व्यय वित्त समिति से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री सिंह ने ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, Prime Minister said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. Highlighting global efforts to strengthen economic resilience, the Prime Minister said India and the Netherlands are jointly focusing on building robust supply chains. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will

0: நேரம் 8:40.
1: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம் ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் பாரதிய சேனா ஜோ தீனோ சேனாவோ கோ சமர்ப்பித் ஹை ஹர் தேஷ்வாசி கோ சமர்ப்பித் ஹை ததா பாரத் கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை பேராமிலிட்டரி கே அர்த்த சைனிக் பலோ கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை ரக்ஷா மந்திராலய சே லேகர் தேஷ் கே एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं

0: का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी

0: और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पश्चिम

0: 45 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी

सदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल ओर आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
0: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
3: साथिया, साथिया।
1: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, I love you।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
2: मस्त बहा।

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं।
2: ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में

0: रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
1: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
2: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।

फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने।

0: ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती हैं जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो?
4: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तो अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
5: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है।
5: न

2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म एबीसीडी टू।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी जून हरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।
4: जाने

0: गीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: राकेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दरअसल आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूँ, चला रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना। मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई

0: पैसा शामिल है जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड की हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरण के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंध, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता CBI की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की

0: रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले सभी निर्णय को भी सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित कर रखने का भारत का फैसला अभी भी लागू है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियों और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today said India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, the Netherlands, as part of its 5-nation tour, PM Modi said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. The Prime Minister also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of the Netherlands during the second leg of his 5-nation visit. Prime Minister Modi was presented today with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of the Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his 5-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. The Prime Minister's visit to Sweden's industrial hub, Gothenburg, is expected to further strengthen bilateral ties between India and Sweden, particularly in emerging and high technology sectors such as trade, artificial intelligence and space technology. Speaking exclusively to Akashvani, India's ambassador to Sweden, Anurag Bhushan, highlighted the significance of the visit and said it would open new avenues of cooperation and innovation between the two countries. Head of Engineering and Products Development at Artifex in Sweden, Per Stenfeldt, expressed

0: optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment, which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NET paper leak case, P.V. Kulkarni, and another accused, Manisha Waghmare, to CBI custody for 10 days. Special CBI Judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the duo needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. India has rejected the latest award issued by the so-called Court of Arbitration on the Indus Waters Treaty dispute with Pakistan. The Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said India does not recognize the court and considers it to be illegally constituted. He said any decision or award issued by the court is null and void. The spokesperson said the court had issued a supplementary award related to maximum pondage under the Indus Waters Treaty. At the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, India's Sanjana has won 3 bronze medals in the women's 77-kilogram category. Sanjana lifted 96 kilograms in the snatch, 124 kilograms in clean and jerk, and total 220 kg to claim 3 bronze medals. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath, main Prashant Kumar. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से औपचारिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा के खिलाफ चेतावनी दी। इसराइल की सेना ने हमास की सैन्य शाखा के नेता इज अल-दीन अल-हद्दाद को मारने का दावा किया और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारी

0: ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल तामपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों के सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे तामपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मुहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। 5 प्लेटों पर संस्कृत में शिलालेख है, जबकि 16 प्लेटों पर तमिल में शिलालेख है। कुलुतुंगा चोल प्रथम की मुहर लगी प्लेटों के एक अन्य समूह में भी तमिल शिलालेख है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। ASML के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ फुके ने कहा कि भारत का तेजी से बढ़ता सेमीकंडक्टर क्षेत्र कई नए अवसर प्रदान करता है और कंपनी क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। भारत नॉर्ड्रिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के लिए वर्ष 2018 में स्वीडन की यात्रा के बाद ये उनकी दूसरी नॉर्ड्रिक यात्रा होगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से औपचारिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने कहा था कि ताइवान को स्वतंत्र घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे स्वयं को पहले से ही एक संप्रभु राष्ट्र मानते हैं। अमेरिका लंबे समय से ताइवान का समर्थन करता रहा है, जिसमें अमरीकी कानून के अंतर्गत उसे आत्मरक्षा के साधन उपलब्ध कराना भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और सी चिनफिंग ने ताइवान मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। ट्रंप ने यह भी कहा कि चिनफिंग ताइवान के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है और किसी भी प्रकार की आजादी की दिशा में उठाए गए कदम का विरोध करते हैं। इसराइल ने हमास के सैन्य विंग के प्रमुख और 2023 में हुए हमलों के सूत्रधारों में से एक इज अल दीन अल हद्दाद को मार गिराया है। इन हमलों के बाद गजा युद्ध हुआ था। इसराइली सेना ने बताया कि अल हद्दाद कल गजा में हुए हवाई हमले में मारा गया। सेना ने कहा कि वे हमास के सैन्य नेतृत्व में बचे हुए अंतिम वरिष्ठ कमांडरों में से एक था। अल हद्दाद ने अपने पूर्ववर्ती मोहम्मद सिनवार की मृत्यु के बाद ये पदभार संभाला था।

0: के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता और बलूच यकजहती कमेटी के मुख्य आयोजक डॉक्टर महरंग बलूच ने बलूचिस्तान में असहमति से निपटने के पाकिस्तान के रवैये की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं के खिलाफ जबरन गायब करने, गैर न्यायिक हत्याओं और डराने धमकाने की रणनीति में वृद्धि कर रहा है। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय जोड़ी ने 19-21, 22-20, 21-16 से जीत हासिल की। फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से औपचारिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा के खिलाफ चेतावनी दी। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Purnima Samant Kadakoti with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India and Netherlands working together to build trusted future-ready supply chains. Calls India a land of opportunities in the 21st century. Tata Electronics and Dutch firm ASML sign agreement to boost semiconductor manufacturing in India. New Delhi rejects Indus Waters Treaty award by the Court of Arbitration, calling it illegal. US President Donald Trump warns Taiwan against formal declaration of independence from China. Israel claims its army killed Hamas military wing leader Izzaldin Al-Haddad. And in badminton, Indian duo Sattvik Sairaj and Chirag Shetty enter finals of Thailand Open. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague today, PM Modi highlighted India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Later, Prime Minister Modi met King Willem Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will proceed to Sweden tomorrow as part of his five-nation tour. This will be his second visit to the Nordic nation after his landmark trip in 2018 for the inaugural India-Nordic Summit.

0: Please stand by now for the news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने

0: में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe.

ராஜா செண்டு நானாக கண்டு

0: கீட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது திரைக்கானம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரஷாந்த் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति ने अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நினைவு பெற்றது இரவின் மடியில். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நினைவு பெற்றது இரவின் மடியில். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரசாந்த் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही हैं। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कोलकाता

Oh, what a pity.

பட்டதோ வலையிலே பிடிப்பட்டதோ அது பட்டு கொண்டதோ இல்ல.

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது நினைவில் நின்றவை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर

0: दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। इस संबंध की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी से जुड़ी है। अब यह साझेदारी सांस्कृतिक आधार से आगे बढ़कर मजबूत औद्योगिक और आर्थिक सहयोग में बदल रही है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कल डोमिनिका की विदेश मंत्री के साथ फार्माकोपिया और त्वरित प्रभाव परियोजना QIP पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। श्री मार्गेरिटा ने डोमिनिका के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार तथा ऊर्जा मंत्री विंस एंडरसन से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल FTA पर लगने वाले VAT को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के विजन के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र को राहत देना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक गतिविधियों को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि रियायती VAT दर फिलहाल 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और दिल्ली के हित में लिया गया यह फैसला सरकार के लिए लगभग 985 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का कारण बन सकता है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए बहुक्षेत्रीय तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई मेंढर तहसील के मनकोट क्षेत्र में 12 मई को ही उस घुसपैठ की कोशिश के बाद शुरू की गई है, जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்தது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा

0: का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और हरित परिवर्तन, AI प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया, गोटा, चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में जिलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर दिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और CRPF ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनील नारायण ने 2 ओवर में 29 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शाह ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान कल पहले दिन विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया, गोटा, चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में झीलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के 70 नव निर्वाचित पार्षदों से भी मुलाकात की। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय खंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। कोलंबिया में एक पूर्व मेयर रोजर्स देविया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथ उनके एक सहयोगी एडर कॉर्डोना की भी मौत हो गई। देविया पहले क्यूबराल शहर के मेयर रह चुके थे और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अबेलार्डो डी ला एस्प्रेला के समर्थक थे। इस घटना को राजनीतिक हिंसा माना जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। वहीं कल हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said that the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. He cautioned that the failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai.

0: பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை செங்கல்பட்டு வி முத்துகிருஷ்ணன் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள்.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन भी यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। ये यूरोप के उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी की इस वर्ष जनवरी में ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद यूरोप की पहली यात्रा है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के अंतर्गत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना

0: सराहना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इस दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण के लिए साझेदारी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा बागमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेष

0: चिप निर्माण के लिए साझेदारी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा बाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र तैयार करने की टीम में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा बाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और समाज के अन्य वर्गों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति की अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार से संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले की एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के सभी निर्णय को भी अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित करने का भारत का निर्णय अभी लागू है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यानिक सिनर इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में कल सिनर ने दानिल मेदवेदेव को हराया। फाइनल में आज सिनर का मुकाबला कैस्पर रूड से होगा। रूड ने दूसरे सेमीफाइनल में इटली के लुसियानो डार्डेरी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with the Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the prime minister's broader European tour and his first visit to the continent since the landmark India-European Union Free Trade Agreement took effect in January 2026. This journey is designed to review bilateral relations and explore cooperation in an era of rapid technological shifts and complex geopolitical challenges. The visit follows a high growth trajectory in economic engagement, with bilateral trade reaching a record $7.75 billion in 2025 and Swedish FDI into India totaling $2.825 billion between 2000 and 2025. This foundation was laid during the Prime Minister's 2018 visit, which led to the Joint Innovation Partnership for a Sustainable Future. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. This deep-rooted bond is marked by historic milestones such as centenary of Nobel laureate Rabindranath Tagore's 1926 visit to Sweden.